0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार

0: ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेडवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

सुग्रीव को बालीवत के अपने निश्चय का आश्वासन देते हुए श्री राम ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए। जेन मित्र दुख हुई दुखारी, तिनही बिलोकत पातक भारी। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से विमुख कर अच्छे मार्ग पर ले जाए, अपनी सामर्थ्य भर सदैव मित्र के हित के लिए कार्य करे और विपत्ति के समय 100 गुना अधिक स्नेह करे। जो सामने तो ठुकुर सुहाती करता है, कोमल प्रिय वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। श्री राम के श्रीमुख से मित्र और कुमित्र के लक्षण सुनकर सुग्रीव के मन में वैराग्य का संचार हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग कर आजीवन श्रीराम का सेवक होकर रहने की कामना प्रकट की।

0: आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: वर्षा चौमासा श्रृंखला को लेकर संगीत सरिता कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं शुभा मुद्गल जी के साथ। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और फिर से हम उसी घटा और बदरिया में खो जाने के लिए उत्सुक हैं। कल आप बात कर रही थी शुद्ध मल्हार की, और उसी समय आपने ये भी कहा था कि मेघ मल्हार भी कहा जाता है।
1: जी,
0: तो ये राग मेघ और मल्हार दो अलग चीज़ें हैं या दोनों एक ही राग है, या ये इसका क्या स्वरूप है?
1: अक्सर ये माना जाता है कि मेघ और मेघ मल्हार को एक ही राग मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेघ पृथक है, मेघ मल्हार पृथक है, और चूंकि ये कार्यक्रम बहुत से लोग सुन रहे होंगे, गुणीजनों से तो मैं क्षमा मांग ही लूँ कि यदि कुछ ऐसा कह दिया जो जिसमें त्रुटि है, और संभव है, संभव क्या मतलब, वास्तव में त्रुटियां होंगी ही, तो उनसे मैं पहले से क्षमा मांग लूँ।
0: नहीं, हाँ।
1: लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद संगीत सीख रहे हों, उनके लिए मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गुरुमुख से तो ये सीखा जाता ही है, साथ में अन्य बहुत ऐसे शोध करने वाले लोग रहे हैं, शोध रहे हैं, जो कि जिन्होंने मल्हार पे बहुत अच्छे ग्रंथ हाल फिलहाल में भी लिखे हैं। एक ऐसा ग्रंथ है डॉक्टर गीता बैनर्जी द्वारा लिखा हुआ, मल्हार दर्शन के नाम से। उसमें उन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी है कि मेघ और मेघ मल्हार किस तरह से पृथक हैं। मेघ जो है वो प्राचीन रागों में माना जाता है, और इसमें ये ऐसा भी डर रहता है कई बार कि इसके जो इसकी जो इसमें जो स्वर प्रयोग में आते हैं तो वो कई बार मधमाद सारंग के आसपास भी चले जाते हैं।
0: जी,
1: दूसरी बात ये कि उसमें मेघ मल्हार में दोनों निषाद भी लगाए जाते हैं। फिर मेघ में आंदोलित ऋषभ जो म का एक कण लेके आता है वो बहुत आवश्यक होता है, उससे मेघ की पहचान बनती है। लेकिन ऋषभ पे आप रुकते नहीं हैं, प्रायः आप म रे प कह के वो जो स्वर संगति जो मल्हार का एक प्रतीक है उस पर आप चले जाते हैं। तो मेघ और मेघ मल्हार बिल्कुल अलग माने गए हैं, और उनकी अलग अलग बातों पे बहुत चर्चा रहती है, मतभेद भी रहते हैं, लेकिन हमें जो सिखाया गया है उसके हिसाब से मेघ अलग और मेघ मल्हार अलग है।
0: मेघ मल्हार जब प्रस्तुत होता है तब वो मेल बनाना भी बहुत मुश्किल होता है।

0: हो कई बार ऐसा भी होता है कि जो जिसने बंदिश गढ़ी है उसने किसी एक पक्ष को शायद ज़्यादा महत्व दिया हो, तो उसके हिसाब से भी गाना पड़ता है। यानी मेघ मल्हार की जो शक्ल आपको बताई गई है उसको तो ध्यान में आप रखते ही हैं, साथ में उस शक्ल को भी ध्यान में रखते हैं जो कि रचनाकार ने दी है, जिस जो वाग्ञयकार ने बनाई है। क्योंकि हर यही तो हमारे संगीत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं। आप एक ही राग को अलग अलग लोगों के अनुभव से देख सकते
1: ये
0: हैं।
1: अपनी अपनी प्रतिभा का आविष्कार होता है।
0: जी
1: जैसे
0: बिल्कुल।
1: मेघ मल्हार का हम चलन भी सुनेंगे, और जो बात आप कह रही थी कि आंदोलित ऋषभ म का कण लेकर आता है, वो भी तो समझाइए ना।
0: ने सारे

0: वाह वाह। लेकिन जब केवल मेघ गाया जाए तो उसका चलन भी तो अलग होगा। आप जो बंदिश सुनाने वाली हैं वो मेघमल्हार में है या मेघ में?
1: जी, मैंने मेघ की एक बंदिश आज प्रस्तुत करने के लिए चुनी है
0: जी,
1: और इसका साहित्य मुझे बहुत मज़ेदार लगा।
0: साहित्यिक पक्ष तो हमें ढूंढना ही है इसका।
1: देखिए क्या इसमें कहा गया है। देखो माई, सावन दूल्हे आयो।
0: सावन को दूल्हा के रूप
1: तो
0: में। हाँ
1: इसे देखिए क्या धूमधाम है दूल्हे की।
0: जी,
1: देखो माई, सावन दूल्हे आयो, चार मास को लग्न लिखायो। तो आपकी जो चौमासे की बात थी,
0: जी
1: आपके जो कार्यक्रम का शीर्षक है उसकी भी
0: जी
1: बात आ गई कि
0: हाँ
1: ये 4 दिन की ही प्रीत है, 4 मास की ही प्रीत है। तो 4 मास को लग्न लिखायो, क्योंकि
0: हाँ
1: उसके बाद तो फिर हेमंत ऋतु शिशिर
0: ये
1: इत्यादि
0: आने
1: सब आ
0: वाले
1: जाते
0: हैं।
1: हैं। तो 4 मास को लग्न लिखायो, बदरन अंबर छायो, बिजरी चमके बगला बराती। जो पक्षी
0: अच्छा,
1: होता है वो
0: बगला।
1: बारात में आया है।
0: हाँ
1: बिजरी चमके बगला बराती, कोयल शब्द सुनायो, दादुर मोर पपैया बोले, इंद्र निशान बजायो। तो बैंड
0: वाह,
1: की कोई जरूरत नहीं है,
0: इंद्र
1: प्रकृति।
0: महाराज, जो इंद्र
1: जी
0: ही को ये प्रतीक रूप में माना जाता है और ये कहा
1: जी
0: गया है कि बरसात के या वर्षा के जो स्वामी हैं, देव भगवान जो कोई देवता है, तो वो इंद्र देवता है।
1: जी
0: तो अब वही है जो बाराती है और वही बजा रहे हैं इसका, तो बैंड बाजे की तो
1: कोई
0: ज़रूरत है
1: जरूरत
0: ही
1: ही नहीं
0: नहीं।
1: है।
0: और बहुत खूबसूरत सी बात कि बाराती बनकर बगुला आया है। अगर हम देखें तो आज बरसात होती है और अपने पंखों को ऐसे सिकुड़ कर सफ़ेद सफ़ेद रंग के बगुले पेड़ों के ऊपर ऊंचाइयों पर जमे हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं।
1: जी
0: तो बहुत ही खूबसूरत ये रचना है और हम इसे ज़रूर सुनेंगे।

देखो माई, सावन दूल्हे आयो। बंदिश बंदिश के बोल और इसकी रचना, सांगीतिक रचना मन में गूंजती रहेगी जरूर। शुभा जी, हम कल फिर मिलेंगे। और श्रोता मित्रों, इसी के साथ आज रुकते हैं। नमस्कार।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस थोड़ी ही देर में।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: वज्रदंती। वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
2: हेलो
3: राजेश जी, हूँ पुलिस स्टेशन थी बोलूं छू।
2: फरी थी?
3: तमे डिजिटल अरेस्ट मा छो, बीजा रूम मा जाओ। देखला, तमारा पार्सल मा थी ड्रग्स मळ्या छे, लांबा जशो।
2: 10 लाख आपी दो, बची जशो।
4: सर आटला क्या थी?
2: एक लिंक मोकली छे, हमना प्रोसेसिंग माटे 2 लाख मोकलो, बाकी ना पची।
4: सर 2 लाख?
5: शू थयो पप्पा?
4: बेटा कही रिया छे के मारा पार्सल मा ड्रग्स मळ्या छे।
3: अरे
4: कापी नाख्यो।
5: पैनिक नहीं करो पप्पा, डिजिटल अरेस्ट जेवू काईच नथी होतू, आ बधा फ्रॉड छे।
4: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI वगैरह ना नाम थी आवनारा साइबर अपराधियों ना फोन के वीडियो कॉल थी सावधान रहो। तेमने कोई पैसा ना मोकलो अने तरत पुलिस मा रिपोर्ट करो। जो तमे समझदारी नहीं बतावो
6: तो पैसा गुमावशो।
7: RBI कहे छे,
8: जानकार बनो, सतर्क रहो।
9: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
10: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
9: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
11: हाय हाय,
12: विविध भारती पर आप इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त का गाया श्रीमती 420। इस फिल्म का गीत है, जान निसार अख्तर के बोल हैं, संगीत से इस गीत को सजाया है OP नैयर ने।

शक इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में गुलजार का लिखा गीत था, तर्ज बनाई थी वसंत देसाई ने। अगला गीत सुनिए उजाला फिल्म से, आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

स्कूल मास्टर इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वरों में। प्रदीप का लिखा गीत है, वसंत देसाई का ही संगीत।

भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम की अब आखिरी प्रस्तुति सट्टा बाजार फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में गुलशन बावरा के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार की बस थोड़ी ही देर में।
1: परीक्षा अमात्र एक शब्द नथी, परंतु दरेक उम्मीदवार ना वर्षोनी अथाक तपश्चर्या, माता पिता नी अनंत आकांक्षाओ अने देशना उज्ज्वल भविष्य तरफ नु पहलू पगथियुं छे। आ व्यवस्था ने जाळवी अने दरेक उम्मीदवार नी वर्षो नी मेहनत ने योग्य सन्मान अने न्याय आपवो ए ज सरकार नी प्राथमिकता रही छे। अने एटले ज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ना मार्गदर्शन हेठळ केन्द्र सरकारे युवा पेढ़ी ना भविष्य साथे चेड़ा करनारा असामाजिक तत्वों सामे अपनाव्यु छे पेपर लीक अने गैरवृत्ति सामे जीरो टॉलरन्स नु आकरू वलण, जे अंतर्गत जाहिर परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करवा अने गैरवृत्तियों अटकाववा माटे पब्लिक एक्जामिनेशन्स अमेंडमेंट विधेयक ने संसदीय मंजूरी प्राप्त थई छे। परीक्षा व्यवस्था साथे गैरवृत्ति करनारा गुनाहित तत्वों सामे 10 वर्ष सुधीना कारावास अने ₹10 करोड़ सुधीना आकरा आर्थिक दंड सहितना अत्यंत कड़क दंडात्मक पगला लेवामां आवशे। तेमज झड़पी अने निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करवा स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू कराशे, जे मात्र 3 महीना मां सुनावणी करशे। पेपर लीक अने गैरवृत्ति सामे केंद्र सरकार ना जीरो टॉलरेंस ना आकरा संकल्प थी ज मळशे दरेक मेहनतू उम्मीदवार ने पारदर्शी परीक्षा अने सुरक्षित भविष्य नी गारंटी।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। परीक्षा अमात्र एक शब्द नहीं परंतु दरेक उम्मीदवार ना वर्षोनी अथाक तपश्चर्या, माता पितानी अनंत आकांक्षाओ अने देशना उज्ज्वल भविष्य तरफ नु पहलो पगथियुं छे। आ व्यवस्था ने जाळवी अने दरेक उम्मीदवार नी वर्षोनी मेहनत ने योग्य सन्मान अने न्याय आपवो ए ज सरकार नी प्राथमिकता रही छे। अने एटले ज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ना मार्गदर्शन हेठळ केन्द्र सरकारे युवा पेढ़ी ना भविष्य साथे चेड़ा करनारा असामाजिक तत्वों सामे अपनाव्यू छे पेपर लीक अने गैरवेती सामे जीरो टॉलरेंस नु आकरू वलण, जे अंतर्गत जाहिर परीक्षाओं मा पारदर्शिता सुनिश्चित करवा अने गैरवेतियों अटकाववा माटे पब्लिक एक्जामिनेशन्स अमेंडमेंट विधेयक ने संसदीय मंजूरी प्राप्त थई छे। परीक्षा व्यवस्था साथे गैरवेती करनारा गुनाहित तत्वों सामे 10 वर्ष सुधीना कारावास अने ₹10 करोड़ सुधीना आकरा आर्थिक दंड सहितना अत्यंत कड़क दंडात्मक पगला लेवामां आवशे। તેમજ ઝડપી અને નિષ્પક્ષ ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા સ્પેશિયલ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ શરૂ કરાશે, જે માત્ર 3 મહિનામાં જ સુનાવણી કરશે। પેપર લીક અને ગેરરીતિ સામે કેન્દ્ર સરકારના ઝીરો ટોલરન્સના આકરા સંકલ્પથી જ મળશે દરેક મહેનતુ ઉમેદવારને પારદર્શી પરીક્ષા અને સુરક્ષિત ભવિષ્યની ગેરંટી।

0: मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की
1: परीक्षा अमात्र एक शब्द नहीं, परंतु दरेक उम्मीदवारना वर्षोनी अथाक तपश्चर्या, माता पितानी अनंत आकांक्षाओं अने देशना उज्ज्वल भविष्य तरफनु पहलो पगथियुं छे। आ व्यवस्थाने जाळवी अने दरेक उम्मीदवारनी वर्षोनी मेहनतने योग्य सन्मान अने न्याय आपवो ए ज सरकारनी प्राथमिकता रही छे। अने एटले ज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदीजीना मार्गदर्शन हेठळ केन्द्र सरकारे युवा पेढीना भविष्य साथे चेड़ा करनारा असामाजिक तत्वों सामे अपनाव्यू छे पेपर लीक अने गैरवीती सामे जीरो टॉलरेंस नु आकरू वलण, जे अंतर्गत जाहिर परीक्षाओं मा पारदर्शिता सुनिश्चित करवा अने गैरवीतियो अटकाववा माटे पब्लिक एग्जामिनेशन्स अमेंडमेंट विधेयक ने संसदीय मंजूरी प्राप्त थई छे। परीक्षा व्यवस्था साथे गैरवीती करनारा गुनाहित तत्वों सामे 10 वर्ष सुधीना कारावास अने ₹10 करोड़ सुधीना आकरा आर्थिक दंड सहितना अत्यंत कड़क दंडात्मक पगला लेवामां आवशे। તેમજ ઝડપી અને નિષ્પક્ષ ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા સ્પેશિયલ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ શરૂ કરાશે, જે માત્ર 3 મહિનામાં જ સુનાવણી કરશે। પેપર લીક અને ગેરરીતિ સામે કેન્દ્ર સરકારના ઝીરો ટોલરન્સના આકરા સંકલ્પથી જ મળશે દરેક મહેનતુ ઉમેદવારને પારદર્શી પરીક્ષા અને સુરક્ષિત ભવિષ્યની ગેરંટી।
2: खय्याम के संगीत से सजा मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में सुनिए। फिल्म का नाम है मोहम्मद, मोहब्बत इसको कहते हैं।
3: कह दिए हो शुम्या।

0: अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई

0: भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की

0: स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिला
0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाई। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी AI की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई AI से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: So this is first and foremost body, and it is compulsory for all industrial establishments to constitute. And more importantly, women also should be a part of this particular committee in proportion to their strength in the industrial establishment. So here the worker can apply, can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज़्यादा strength है, ज़्यादा strength का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे workers हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब हम innocent है, उसको कोई भी misguide कर सकता है, trade unions या कोई भी miscreant व्यक्ति उसको misguide कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, उसमें एक वर्क्स कमेटी भी बनाई जाएगी. और उस वर्क्स कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज़ को वो एड्रेस करें. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी कि जो कि पीस एंड हारमोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी. और ये दोनों कमेटियाँ इन हाउस कमेटी हैं, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को बनानी है. और वर्क्स कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी, सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाएगा. अब अगर हम लोग वर्क्स कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास. अब लेबर मशीन हमने इसमें कंस्टिट्यूट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 डेज, कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे. अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है. पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेल्योर हो जाए सेटलमेंट. अब काउंसिलर्स ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. वर्कर के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है. और वो सीधे जा सकता है, कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिटेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित हैं, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है. सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा, जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है सेंट्रल स्फीयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाए.
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इन इंडियाज न्यू लेबर कोड्स from a webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes.
2: उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो कर्मचारी जो हमारा वर्कर है वो सीधा सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के, वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें, और इस कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2-member tribunal। पहले केवल 1-member tribunal था, अब हमने बना दिया है 2-member tribunal और इसके अंदर एक जुडिशल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन, तो आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे।

अगर कंसलेशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है, सेम प्रोविजंस हैं जिसके अंदर टू मेंबर ट्राइब्यूनल है, ये भी इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, जुडिशल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे और या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाते जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि जहाँ नहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। मैं बात करूँगा कोड ऑन वेजेस की, क्योंकि कोड ऑन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा IR कोड में आ जाते हैं उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से या मैटरनिटी बेनिफिट्स या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है, कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज़ को सुनेंगे। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा, तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइस करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइस करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए, इस पर वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार को अपनी सलाह दें। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है, क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा, आपका डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है या बोनस के डिस्प्यूट हैं, ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है, अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है उसको। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीज़ें बताई, SI और PF और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है इसको कवर किया गया है इसमें, सो आपका 80% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा, इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, EPFO और ESIC को इसमें कंटिन्यू रखा गया है, और जो ये सारे चीज़ें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को कवर करेंगे। सो इसमें भी दो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ और अपेलेट अथॉरिटीज़ जो ग्रेचुटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सेम सिमिलर प्रोविजन है और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो ये जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं हैं इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये OSH कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है कि जो आपका जो वर्क प्लेस है बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्स को आप कैसे आप कम कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है, नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न है सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जहाँ पे, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी क्योंकि माइंस में अलग तरह का हजार्ड्स है और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हजार्ड्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज़ का प्रावधान किया गया है जो वर्कर्स जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरनमेंट को किस

0: प्रकार से सुरक्षित बनाया जाए। और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज का सिमिलर प्रोविजन है जैसे आप पिछले कानूनों में देख रहे हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी सेम ही इसमें प्रोविजन है। मतलब आप देखेंगे कि बाकी तीन कोड में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो एक बड़ा एम्बिट है और बाकी तीन कोड में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जरिए आप प्रिवेंटिव चीजों को कर लेंगे इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से।
1: You were listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes by Govind Ram, Deputy Secretary, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: શ્રોતા મિત્રો, આપ સાંભળી રહ્યા હતા કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયના ન્યાય વિભાગ દ્વારા સ્વપ્રાયોજિત કાર્યક્રમ, જેનો ભાગ 4 આપે સાંભળ્યો. કાર્યક્રમનું પ્રસારણ આકાશવાણીની વિજ્ઞાપન પ્રસારણ સેવા વિવિધ ભારતીના અમદાવાદ કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.
3: भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। नई सुबह की सुनहरी किरणों के साथ, वैसे बादल भी छाए हुए हैं, कई जगहों पर सूर्य की किरणें भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन प्रकृति तो हमारे आसपास ही है, तो इस प्रकृति का मुस्कुराता आंचल आपका स्वागत कर ही रहा है। आइए ताज़ी हवा में गहरी सांस लें, कुछ पल योग और व्यायाम को दें और पूरे उत्साह के साथ इस नए दिन का स्वागत करें। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम चित्रलोक।

स्पेशल 26 इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। एमएम करीम और केके की आवाज़ों में इरशाद कामिल की रचना थी। संगीत बद इस गीत को किया था एमएम करीम ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें कि आज है फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन उन दोस्तों के नाम है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को मुस्कुराहटों से भर दिया। अगर किसी अपने से कोई गिला शिकवा रह गया हो तो आज उसे प्यार से मिटा दीजिए। एक प्यारा सा संदेश भेजिए या एक फ़ोन कीजिए। समय मिले तो मिलकर आइए, क्योंकि सच्ची दोस्ती से बढ़कर कोई अनमोल रिश्ता नहीं होता। दोस्ताना फिल्म का गीत विशाल डडलानी, श्रेया घोषाल की आवाज़ों में साथियों ने साथ दिया है। अनविता दत्त ने इस गीत को लिखा है और विशाल शेखर ने संगीतबद्ध किया है।

जाने तू या जाने ना, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे दयाल, सतीश, सायोनारा, दर्शना भार्गवी और साथियों के स्वरों में। अब्बास टायरवाला ने इस गीत को लिखा था, एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया था। अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। हाफ गर्लफ्रेंड इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं एमी मिश्रा और अनुष्का शहानी की आवाजों में। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, एमी मिश्रा का संगीत है।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर। अगला गीत द गर्लफ्रेंड फिल्म से हिशाम अब्दुल वहाब की आवाज है। इस गीत को संगीतबद्ध भी हिशाम अब्दुल वहाब ने किया है। गरिमा ओब्राह का लिखा गीत है।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, पीकू फिल्म का गीत। इस गीत के कलाकार जो हैं गायक कलाकार, संगीतकार और गीतकार अनुपम रॉय हैं।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए
3: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी,
4: कहिए ना,
3: आ गया है मौका

0: सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: गोरी तेरे प्यार में इस फिल्म का गीत कमाल खान और नीति मोहन के युगल स्वरों में, कौसर मुनीर का लिखा गीत है, विशाल शेखर की बनाई तर्ज पर।

श्रोताओं, आज 9:30 पर आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार जयदेव पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। और हम आपको आगे बता देते हैं कि 10 आप पिटारा के अंतर्गत सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग दो, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और आज सुबह 11 विविधा में सृजन भारती के कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न संपादित अंश सुनेंगे। सहभागी हैं काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुमति ओझा, प्रोफेसर नयन वर्मा और विभा सिंह, और इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और अब कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान और मोहित चौहान का गाया, जयदीप साहनी के बोल हैं, सचिन जिगर का संगीत, फिल्म का नाम शुद्ध देसी रोमांस।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम को 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की, रूपांतर जौहरा मिर्जा का है, निर्देशक लोकेंद्र शर्मा। कार्यक्रम चित्रलोक

आधी सदी से भी ज्यादा वक्त गुजरा, कुछ ध्वनियां हिंदुस्तान के घर घर में गूंज रही हैं, कुछ आवाजें आपको जगाती हैं, कुछ सिखाती हैं, कुछ ध्वनियां सुदूर अंचल में खींच ले जाती हैं, कुछ गुदगुदाती हैं। बरसों से ये ध्वनियां हवा में तैर रही हैं, इन्हें आपके घरों में पहुंचाती है

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत बेशरम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाजें। राजीव बंडवाल ने इस गीत को लिखा है, ललित पंडित ने सजाया है संगीत से।

श्रोताओं आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा उजाले उनकी यादों के फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का भाग तीसरा आज प्रसारित होगा। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड फिल्म से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजें, कुमार का लिखा गीत, जतिंदर शाह का संगीत।

कुणाल गांजावाला और गायत्री गांजावाला की आवाज़ों में अगला गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और अजय अतुल ने संगीत से सजाया है। फिल्म का नाम है माय फ्रेंड पिंटो।

बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज आपके साथ थी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को। एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: धारे ना ना ना बीच धारे ना जाओ शाम पैया परू बीच धारे ना जाओ शाम।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: परीक्षा अमात्र एक शब्द नहीं, परंतु दरेक उम्मीदवार ना वर्षोनी अथाक तपश्चर्या, माता पिता नी अनंत आकांक्षाओ अने देश ना उज्ज्वल भविष्य तरफ नू पहलू पगथियू छे। आ व्यवस्था ने जाळवी अने दरेक उम्मीदवार नी वर्षो नी मेहनत ने योग्य सन्मान अने न्याय आपवो एज सरकार नी प्राथमिकता रही छे। अने एटले ज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ना मार्गदर्शन हेठळ केंद्र सरकारे युवा पेढ़ी ना भविष्य साथे चेड़ा करनारा असामाजिक तत्वो सामे अपनाव्यू छे पेपर लीक अने गैरवीती सामे जीरो टॉलरेंस नू आकरू वलण, जे अंतर्गत जाहिर परीक्षाओं मां पारदर्शिता सुनिश्चित करवा अने गैरवीतियों अटकाववा माटे पब्लिक एक्जामिनेशन्स अमेंडमेंट विधेयक ने संसदीय मंजूरी प्राप्त थई छे। परीक्षा व्यवस्था साथे गैरवीति करनारा गुनाहित तत्वों सामे 10 वर्ष सुधीना कारावास अने ₹10 करोड़ सुधीना आकरा आर्थिक दंड सहितना अत्यंत कड़क दंडात्मक पगला लेवामां आवशे, तेमज झड़पी अने निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करवा स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू कराशे, जे मात्र 3 महीनामां सुनावणी करशे। पेपर लीक अने गैरवीति सामे केंद्र सरकारना जीरो टॉलरेंसना आकरा संकल्पथी ज मळशे दरेक मेहनतू उम्मीदवारने पारदर्शी परीक्षा अने सुरक्षित भविष्यनी गारंटी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: આયુષ્માન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના હેઠળ લગભગ 60 કરોડ લોકો રૂપિયા 5 લાખ સુધીની મફત સારવારના હકદાર બન્યા છે. અત્યાર સુધીમાં 12 કરોડથી પણ વધુ મફત સારવાર કરવામાં આવી છે, જેનાથી ગરીબ પરિવારોના તબીબી ખર્ચમાં લગભગ 2 લાખ કરોડ રૂપિયાની બચત થઈ છે. આજે જ આયુષ્માન એપ ડાઉનલોડ કરીને આયુષ્માન કાર્ડ બનાવો. વધુ જાણકારી માટે 1455 પર કોલ કરો.
1: यादों की महफिल और आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई. स्वीकार कीजिए नमस्कार. साथियों, आज हम बात करेंगे उस खास दिन के बारे में जो आज है. जिंदगी का वो खास हिस्सा जिसके साथ हंसी भी खुलकर आती है और छोटी छोटी बातें भी यादगार बन जाती हैं. कुछ दोस्त रोज मिलते हैं तो कुछ दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं. मित्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए अपने सभी दोस्तों को एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी शुभकामनाएं दें. इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं दोस्ती के रंग में रंगे कुछ बेहतरीन गीत. आगाज कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत.

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: परीक्षा अमात्र एक शब्द नहीं, परंतु दरेक उम्मीदवार ना वर्षोनी अथाक तपश्चर्या, माता पिता नी अनंत आकांक्षाओ अने देश ना उज्ज्वल भविष्य तरफ नु पहलू पगथियू छे। आ व्यवस्था ने जाळवी अने दरेक उम्मीदवार नी वर्षोनी मेहनत ने योग्य सन्मान अने न्याय आपवो ए ज सरकार नी प्राथमिकता रही छे। अने एटले ज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ना मार्गदर्शन हेठळ केंद्र सरकारे युवा पेढ़ी ना भविष्य साथे चेड़ा करनारा असामाजिक तत्वों सामे अपनाव्यू छे पेपर लीक अने गैरवीति सामे जीरो टॉलरेंस नु आकरू वलण, जे अंतर्गत जाहिर परीक्षाओं मा पारदर्शिता सुनिश्चित करवा अने गैरवीतियों अटकाववा माटे पब्लिक एक्जामिनेशन्स अमेंडमेंट विधेयक ने संसदीय मंजूरी प्राप्त थई छे। परीक्षा व्यवस्था साथे गैरवीति करनारा गुनाहित तत्वों सामे 10 वर्ष सुधीना कारावास अने ₹10 करोड़ सुधीना आकरा आर्थिक दंड सहितना अत्यंत कड़क दंडात्मक पगला लेवामां आवशे, तेमज झड़पी अने निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करवा स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू कराशे, जे मात्र 3 महीनामां सुनावणी करशे। पेपर लीक अने गैरवीति सामे केंद्र सरकारना जीरो टॉलरन्सना आकरा संकल्पथी ज मळशे दरेक मेहनतु उम्मीदवारने पारदर्शी परीक्षा अने सुरक्षित भविष्यनी गेरंटी।
2: आ

0: दोस्ती से भरे ओतप्रोत, दोस्त और मित्रता की भावना से भरे गीत आज आप सुन रहे हैं। आइए कालखंड में थोड़ी छलांग लगाते हैं और आते हैं उस दशक में जब थोड़े नए तरीके के कुछ गीत दोस्ती को लेकर बनाए गए, जब दोस्ती की परिभाषा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया। लीजिए अब सुनते हैं कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें, समीर की रचना, जतिन ललित का संगीत।
1: Yeah.

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेजो की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने इसे आवाजें दी हैं। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत।

जी हाँ, वही शब्द जिनसे हम गाने सुनवाने वाले हैं उनके कयास आपको लगाने होते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हमसे फेसबुक पर, ताकि आप और हम कमेंट्स के जरिए आपसे संपर्क कर सकें और एक दूसरे की बातें जान सकें। हाँ हाँ, इबारत से जुड़ी बातें। कई श्रोताओं ने इस कौन से गीत बजने वाले हैं इस कार्यक्रम में उसका अंदाजा लगा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ देते हैं। तो आज की इबारत है, कलम सिर्फ लिखने का जरिया नहीं जिम्मेदारी भी है। जो इसकी अहमियत समझते हैं वे इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि कलम का हर गलत इस्तेमाल उसकी गरिमा को थोड़ा और कम कर देता है। ये वही ताकत है जो विचारों को दिशा देती है, सच को आवाज देती है और समाज में बदलाव की नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझकर संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, शब्द मिटाए जा सकते हैं लेकिन उनका असर अक्सर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपनी कलम को हमेशा सत्य, सकारात्मकता और इंसानियत का साथी बनाइए। तो कौन से हो सकते हैं वो शब्द जो आज की इबारत में भी है और आज के गीतों में भी? चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम से, मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे एक इबारत के साथ मिलते हैं और आपको उन इबारतों से कुछ शब्द चुनने होते हैं।

जी हाँ, तो आपकी टिप्पणियों की भरमार लग चुकी है और हमारे एक साथी ने लिखा है, कलम की कमाल और कलात्मकता दर्शाती इबारत काल प्रवाह के कालांतर ने काल क्रम में कलम की कौशल कृत्य को सदैव आत्मसात किया है। इसकी रोशनाई से रोशन हुई सुप्त दीपशिखा की ज्योति को ज्वाला बना ज्वालामुखी तक अंजाम देने में सक्षम है। उपदेशात्मक सकारात्मक विचारपूर्ण सृजनशीलता बोध कराती संगीतमय सफर का इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो ये सफर शुरू हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, कलम और क्रांति एक जोड़ है जो सदियों से समाज को एक शिक्षा और ताकत देती है, आज़ादी देती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक तरीका। परंतु आज़ादी में अच्छे बुरे की समझ ज़रूरी है। जो हमें पसंद नहीं वो कलम से या जुबान से व्यक्त ना हो, ये दायित्व रहे आज के गीतों में। ये माटी, अच्छा इन्होंने गीत भी बताए हैं कि ऐसे गीत कुछ शामिल हो सकते हैं। एक साथी ने लिखा है, कलम दवात वो वस्तु है जो बचपन में प्रथम कक्षा से ही नन्हे हाथों में देकर अपना भविष्य संवारने हेतु दी जाती हैं। कलम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचपन से किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कलम की विशेष भूमिका रही। आज भी हम अपनी बात कलम से ही लिख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल हो गया है। लिखने से याददाश्त अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए कि ये जो पहला गीत आपने सुना, इस का जो शब्द था जो हमारी आज की इबारत में भी था, वो था कलम। और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा कौन सा शब्द है। अनपढ़ फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, राजा मेहदी अली खां ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत।

0: લાખથી વધુ ગ્રાહકોએ સ્માર્ટ મીટર લગાવી ફાયદો લીધો. તમે લગાવ્યું કે નહીં?
1: દિવસના 11 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધીના વપરાશમાં પર યુનિટ 60 પૈસાનું ડિસ્કાઉન્ટ અને ઓનલાઈન એપમાં રીડિંગ થી લઈ કમ્પ્લેન્ટ સુધી બધી સુવિધા. પછી બીજું શું જોઈએ?
0: સ્માર્ટ પ્રીપેડ મીટર એટલે બચત પ્લસ નિયંત્રણ પ્લસ પારદર્શિતા. UGVCL મહેસાણા.
2: हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि उनका पहला गीत शामिल हो चुका है. एक साथी लिखते हैं, शुरुआत में जब हम छोटे थे तब स्लेट और चॉक से लिखना सीखते थे, फिर कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया. जब गलत होता था तो रबर से मिटा लिया करते थे. क्लास 6 से पेन मिला करता था, वो भी स्याही वाला. स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भर लेते थे. वहीं एक साथी ने लिखा है, बोला हुआ भुलाया जा सकता है पर लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता. एक साथी लिखते हैं, कलम की ताकत का सीधा और मुख्य अर्थ वैचारिक क्रांति, सामाजिक सुधार और अज्ञानता के खिलाफ आवाज उठाना है. ये शाश्वत सत्य को रेखांकित करता है कि इतिहास गवाह है कि जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं या तलवारें नहीं कर पाई, वो काम एक लेखक पत्रकार की कलम ने कर दिखाया है. कलम की ताकत असीमित है, लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले का उद्देश्य क्या है. यदि कलम का उपयोग सकारात्मकता, न्याय और सत्य के लिए किया जाए तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन यदि इसका उपयोग झूठी अफवाहें या नफरत फैलाने के लिए हो तो ये विनाशकारी भी हो सकती है. और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, शब्द जरूर पहचानिए.

0: सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
1: आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा

0: है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है। कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है। कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने, प्रदर्शन, अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं, वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन, विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत, मन्नाडे की आवाज। गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आजादी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी।
1: जी जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
2: लिखने की जुनून को पुनः जागृत करने का विविध भारती का शुक्रिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विविध भारती आपको जागृत करती है और उसके बाद आप लिखते भी हैं। तो आप इसी तरह अपनी टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले, तो बयां भी कर सकते हैं। और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुँचाएं। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिखने से अच्छा है आप एक बार उसे कागज़ पर लिख दें और उस कागज़ को मोड़ माड़ कर फेंक दें, ताकि दोबारा उस बात से आपको ठेस न पहुंचे। एक साथी ने लिखा है, मुझे लिखने के पहले बहुत कुछ सोचता है, यानी शायद ये लिखना चाहते हैं कि बहुत कुछ ध्यान में आता है लिखने से पहले, लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तब शब्द भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे लिखना नहीं जमता। एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूँ, ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। जब भी हम कोई विचार अचानक से हमें सूझता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे कहीं लिख लेती हूँ, या तो नोटपैड में, या फिर अक्सर पहले मैं डायरी अपने साथ रखा करती थी कि जब कुछ अच्छा सा दिख जाए, कहीं सड़क पर, कहीं बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी आपके पास ना हो लेकिन फ़ोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

0: लगा दे।
1: जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, उससे जो लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है, जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए, इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

जी हाँ, शब्द था असर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा 10वीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: बनाना।
1: किसी साथी ने लिखा है, मैडम जी सॉरी टू से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, वाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध हैं, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए वाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज़ पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या वाइटनर लगाकर उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ आज की इस सुरीला सफ़र कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

त्रिवेणी को लेकर आज मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। साथियों, दोस्ती जीवन का वो अनमोल रिश्ता है जिसे किसी परिचय, औपचारिकता या स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसा बंधन है जो विश्वास, अपनापन, स्नेह और निस्वार्थ भावना पर टिका होता है। सच्चा मित्र हमारी खुशियों में दिल खोल कर मुस्कुराता है और कठिन समय में बिना किसी अपेक्षा के हमारे साथ खड़ा रहता है। कई बार जो बातें हम अपने परिवार से भी नहीं कह पाते हैं, उन्हें अपने मित्र से सहजता से साझा कर लेते हैं। मित्रता दिवस हमें ऐसे ही साथ निभाने वाले दोस्तों के प्रति सम्मान, आभार और प्रेम व्यक्त करने का अवसर देता है। ये दिन याद दिलाता है कि जीवन की सबसे खूबसूरत यादों, सबसे प्यारी मुस्कानों और सबसे मजबूत हौसलों के पीछे अक्सर किसी सच्चे दोस्त का साथ छिपा होता है।

समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग अलग अलग शहरों और देशों में बस जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की गर्माहट कभी कम नहीं होती। आज तकनीक ने दूरियों को भले ही छोटा कर दिया हो, फिर भी रिश्तों की असली मजबूती केवल संदेशों से नहीं, बल्कि अपनापन, भरोसा और एक दूसरे के लिए समय निकालने से बनी रहती है। एक सच्चा मित्र हमारी कमियों को स्वीकार करता है, हमारी खूबियों को निखारता है और हर कदम पर हमारा उत्साह बढ़ाता है। यही वजह है कि दोस्ती को जीवन की सबसे सुंदर और सबसे सच्ची पूंजी कहा जाता है। अच्छे मित्र हमारे जीवन को केवल आसान ही नहीं, बल्कि खुशियों से भी भर देते हैं।

मित्रता दिवस केवल शुभकामनाएं देने या सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को दिल से याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। आइए इस विशेष अवसर पर अपने उन मित्रों को धन्यवाद कहें जिन्होंने हर सुख दुख में हमारा साथ निभाया, हमारी सफलताओं पर सबसे ज्यादा खुश हुए और कठिन समय में हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक छोटी सी शुभकामना, एक फोन कॉल या एक आत्मीय संदेश भी दोस्ती के रिश्ते को और गहरा बना सकता है, क्योंकि सच्ची दोस्ती समय, दूरी और परिस्थितियों से कहीं ऊपर होती है। ऐसे सभी मित्रों को समर्पित है मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश न

0: लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
0: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जल

0: जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
2: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय

0: ये हैं। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
1: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्र ध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: 16 लाख थी वधु ग्राहकों ए स्मार्ट मीटर लगावी, फायदो लीधो, तमे लगाव्यो के नहीं?
2: दिवस ना 11 थी सांज ना 5 वाग्या सुधी ना वपराश मा पर यूनिट 60 पैसा नु डिस्काउंट अने ऑनलाइन एप मा रीडिंग थी लई कम्प्लेंट सुधी बधी सुविधा। पछी बीजू शू जोईए?
1: स्मार्ट प्रीपेड मीटर एटले बचत प्लस नियंत्रण प्लस पारदर्शिता। UGVCL मेहसाणा।
0: हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: હવે પછીનું ગીત આવી રહ્યું છે, તેને સ્વર આપ્યો છે લતા મંગેશકર, રચના છે હરીન્દ્ર દવેની અને સંગીત છે દિલીપ ધોળકિયાનું।

हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूँ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूँ यहाँ पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया, ज़िला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक।

और लीजिए, अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए, इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

0: अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह फूल वाले ने। और आज का ये जो हमारा सफ़र था मनचाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके ख़तों का इंतज़ार हमें ज़रूर रहेगा, तो अपने ख़त भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन ख़तों के ज़रिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: 16 लाख थी वधु ग्राहको ए स्मार्ट मीटर लगावी फायदो लीधो, तमे लगाव्यू के नहीं?
2: दिवस ना 11 थी सांजना 5 वाग्या सुधी ना वपराश मा पर यूनिट 60 पैसा नु डिस्काउंट अने ऑनलाइन एप मा रीडिंग थी लई कंप्लेंट सुधी बधी सुविधा। पछी बीजू शू जोईए?
1: स्मार्ट प्रीपेड मीटर एटले बचत प्लस नियंत्रण प्लस पारदर्शिता। UGVCL मेहसाणा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: रोशनी इन्हीं चीखों के सोतों से निकलते हैं। अशार
1: सरे तस्लीम खम है मेरे आका, मगर मेरे सरकार ये वक्त टूटे हुए दिलों की बदकिस्मती पर मातम करने, आंसू बहाने या ना महरूमियों का नहीं, बल्कि दिलेराना हिम्मत और नए ताज़ा जोश व खरोश के साथ मुकाबला करने का है।
0: आंसू बहाए नहीं जाते वक्त खां, ये तो खुद ब खुद बहने लगते हैं। खैर छोड़ें इस तज़किरे को, ये बताएं क्या खबर लेके आए हैं।
1: ये गुलाम आका की खैर आफियत के लिए हाजिर हुआ है, क्योंकि ऐसे खतरनाक हालात में पहरेदारों पर भी यकीन करने के लिए अक्ल इजाजत नहीं दे रही है।
0: तो फिर इंतजार किसका है? जितना जल्द हो सके इस जगह को खैराबाद करें। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी घुटन महसूस कर रहे हैं हम।
1: हमने चंद लम्हों के लिए यहाँ कयाम किया है अलीजा।
0: क्या कह रहे हैं बख्त खां?
1: ये नक्शा अपने साथ लेकर आया हूँ, मुलाहिजा फरमाएं और हुक्म करें। हम अब अलीगढ़ के रास्ते की तरफ नहीं जा सकते, फिरंगियों ने वो रास्ता बंद कर रखा है।
0: ठीक है, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, आगरे से पूरब होकर चंबल के बीहड़ों में जाएं, या भरतपुर के रास्ते मेवाड़ की तरफ।
1: मेरे ख्याल में मेवाड़ की तरफ जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा।
0: आपको यकीन है भरतपुर हमारी मदद करेगा?
1: एलची रवाना कर दिया है आलीजा, भरतपुर से अनकरीब यहाँ पहुँचने ही वाला होगा।
0: माँ बदौलत को अपने सिपह सालार पे यकीन कामिल है। आप जो भी चाहें करें, लेकिन जल्द से जल्द करें।
1: बस मेरे शाह, मैं आनन फानन गया और सारा बंदोबस्त करके आनन फानन हाजिर होता हूँ।

0: दादाजान।
1: दादाजान की जान, आओ आओ, बोलो बेटे रुखसाना।
0: अब आप ही फैसला फरमाएं।
1: किस बात का फैसला बेटे?
0: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
1: क्या
0: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
1: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
0: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
1: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
0: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
1: हम क्या कह रहे थे?
0: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
1: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
0: हमारी सारी कनीजें कहाँ गई?
1: अपने अपने घर।
0: मगर क्यों?
1: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
0: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
1: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
0: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
1: दादी जान।
0: खाना कौन खिलाएगा?
1: दादी जान।
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: दादी जान, क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगे?
1: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
0: आप? दादा जान।
1: हाँ।
0: आप?
1: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
1: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
0: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यही खत्म करें।
1: हाँ।
0: और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, हम आपको किस्सा

0: सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
1: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, दादा जान ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
0: लेकिन लेकिन एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं? रुखसाना तो कब की यहाँ से जा चुकी है।
0: रुखसाना चली गई मलिका।

0: सिया आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया,
1: मेरे
0: सब
1: सरताज,
0: कुछ।
1: किस्सा आप किसे सुना रहे हैं? रुखसाना तो कब की यहां से जा चुकी है।
0: रुखसाना चली गई। मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
1: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
0: मलिका आलिया, कभी जमुना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
1: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हें शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झांकर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए। और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
1: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पुरुष थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेश कीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी। मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले दहकते रहते हैं।
1: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसी अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों को खिलौना समझ लिया हो।
0: उम्र का लंबा है सामने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादर वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
1: कोई आ रहा है।
0: आप पर्दे में हो जाएं।
2: आलीजा,
0: क्या खबर लाए बख्त खान?
2: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त पहुंच चुका है। आलीजा,
0: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
2: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
0: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
2: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादरे वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
0: बख्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहाँ کہ خوف

0: अफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मोहर, एक कोरा दस्तावेज है हम।
1: शाही मोहर की वक़्त आज भी कम नहीं हुई है आलीजा। आप जहां कयाम फरमाएंगे, हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
0: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आब पिया, उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए। हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
1: बजा फरमा रहे हैं आलीजा, इस मादर वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाईं, शालीमार और निशात बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
0: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तेहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी। हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
1: आलीजा, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है। आप मलका आलिया को मुत्तला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: कौन लौट आए बख्त खां?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहां की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाहत, कहां के आली जा, मकबरे में पनाह लेने वाला आली जा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसूर लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने अज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है, हम भेस बदल कर निकल रहे हैं। अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं, अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की मातहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चलें, सवारी तैयार है।
3: बख्त खां, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार।

0: फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
1: बख्त खां, जबान को लगाम दो।
0: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आली जा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
2: बख्त खां, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं। हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये ज़ईफ बादशाह जफर।
0: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चलें।
1: बख्त खां, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
0: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
2: बख्त खां, हमें मलिका आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
0: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
1: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
0: आप खामोश हैं आलीजा। इलाही बख्श, तुम जीत गए। तारीख का मौर्रिख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला, इलाही बख्श, थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आली जा आपकी राह देख रहा हूं।
2: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
1: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
2: ये कैसा शोर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
1: वो आ गए।
2: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?
1: फिरंगी, मैं देखता हूं।
2: मलिका आलिया,
3: मेरे सरताज,
2: हम आखिरी दाव हार गए, फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
3: बख्त खान को बुलवाएं।
4: बख्त कैन, बख्त कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हटसन आया है।
2: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहाँ है? उसने हमसे कहा था।
4: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
2: मत कर, इलाही बख्श।
4: चीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी, प्रिजनर। इलाही बख्श पाएगा इनाम, और तुमको मिलेगा सजा।
2: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था।
4: What did he say?
2: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
4: इज्जत, मर्डर का इज्जत, तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
2: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूट कर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
4: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। Do you know बादशाह? तुम जानता है, मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया, और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
2: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदमबोसी की है और तोहफों के साथ
5: अर्जदास्त पेश की है।

0: I know, हम हैटिकेट भूला नहीं, बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट, I mean, तोहफे के साथ ही आया है, सोल्जर एल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में, तोहफा, गिफ्ट पेश करो, बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
1: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है, क्या रख गया है ये फरंगी इस तख्त में?
2: मालिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तख्त से खनपोश तो हटाएं। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गई। हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौर तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है। तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर, हमारे लगते जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फातिहा पढ़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं

0: तोहफा, अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थी चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: 16 लाख थी वधु ग्राहकों ए स्मार्ट मीटर लगावी, फायदो लीधो, तमे लगावियो के नहीं?
3: दिवस ना 11 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધીના વપરાશમાં પર યુનિટ 60 પૈસાનું ડિસ્કાઉન્ટ અને ઓનલાઈન એપમાં રીડિંગ થી લઈ કમ્પ્લેન્ટ સુધી બધી સુવિધા। પછી બીજું શું જોઈએ?
2: સ્માર્ટ પ્રીપેડ મીટર એટલે બચત પ્લસ નિયંત્રણ પ્લસ પારદર્શિતા। UGVCL મહેસાણા।
0: યે હૈ વિવિધ ભારતી।
4: ઉજાલે ઉનકી યાદો કે। उजाले उनकी यादों के।

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके।
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन, थोड़ी सी बुरी बात
2: फिर
1: है।
2: मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बंबई में हाजिर हो गई फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बंबई, तो बंबई आना लाजमी था, तो बंबई पहुंच गई और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला। वहाँ दामू जवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुलकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बम्बई पहुँचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।
1: वाह।
2: और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बम्बई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंसवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि बम्बई में ये करते हैं, और NCPA के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज से खाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
1: जी।
2: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा, नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी।

0: और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई। तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए। तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास। ओम तो स्ट्रगलर, स्मिता बेचारी नई नई आई हुई पे, हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरम्यान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियाँ बेहद पसंद।
1: वाह वाह वाह,
0: स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही, पटकथा इसकी थी। मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे एक कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड आई देयर इज अ लवली रोल फॉर यू, एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना। हाँ, और बात वहाँ तक रह गई। फिर 4-5 दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगी ना। हाँ हाँ पढ़ूंगी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच
1: इंटरेस्टिंग
0: की
1: है।
0: दिलचस्पी नहीं है इसमें, और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं। और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई हैड माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो, 2-3 बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म, पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई। और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये 4 फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी का सही, फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ, मतलब बिल्कुल उल्टा, जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट।
1: एक्सट्रोवर्ट।
0: तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें खाया दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई, और फिर धीरे धीरे इधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सई ने तो मुझसे बात की थी। मैंने कहा बात तो सच है, मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पूना में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष अवसठ करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता। तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे, तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो? तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी, एंड दैट वॉज इट, दैट वॉज द लास्ट कॉन्वर्सेशन वी हैड। फिर बातचीत हुई ना, मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा, मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे,
0: अच्छा,
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ,
0: हाँ, अरे वाह,
1: है ना, सुनते हैं।
2: जो

0: चश्मे बद्दूर की तरफ आ रहा हूं अब मैं,
1: बाय।
0: और एक दिलचस्प बात ये कि चश्मे बद्दूर भी आपके ही एक टेलीविजन प्रोडक्शन से प्रेरित थी, धुआं धुआं से।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो पूरी दास्तान जो
1: अच्छा,
0: है अब आगे
1: अच्छा,
0: बढ़ाती
1: अच्छा।
0: क्योंकि चश्मे बद्दूर आपकी आइडेंटिटी से चिपक गई है। दूसरी चीज ये है कि हमारे सारे सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप कहीं किसी के घर बैठने जाते हैं और वहाँ चश्मे बद्दूर टेलीविजन पे चल रही है तो आप उठ नहीं सकते, वो एक तिलस्म है।
1: क्या बात है। परसों मुझे एक पुरस्कार मिला,
0: जी गौरव अवार्ड,
1: जी
0: उसकी बधाई भी देनी बाकी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी तक बधाई
1: नहीं,
0: बधाई देता हूँ।
1: वो जी अवार्ड, और वो जी उन्होंने एक बड़ा प्यारा काम किया कि अवार्ड मुझे किसने दिया, दीप्ति नवल ने।
0: वाह वाह वाह।
1: तो दीप्ति को देख के, और उन्होंने मेरे प्ले का नाट्य गौरव अवार्ड मिला मेरे नाटक के लिए, तो उसमें मेरे जासवंदी नाम का एक मेरा नाटक है उसमें से एक उन्होंने 20 मिनट का सीन भी किया स्टेज पे, तो मैं भी दंग रह गई। दीप्ति ने ये मुझे दिया अवार्ड, और दीप्ति ने कहा कि मैंने चश्मे बद्दूर की, फिर मैंने कथा की, और उसके बाद इतनी सारी मैंने फिल्में की अच्छी अच्छी ये वो बहुत फिल्में की, लेकिन लोग मुझे भूलने नहीं देते हैं। मुझे कहते हैं हाँ चश्मे बद्दूर, हाँ हाँ कथा, कहते ले दे के सही की ये दो फिल्में जो चिपक गई है, कुछ मतलब नकली गुस्सा दिखा रही थी। इतना प्यारा उसने ये किया कि वो ये दो ले दे के फिर इन दोनों फिल्मों पर आके मामला रुक जाता है कि अरे बाबा मैंने और भी बहुत काम किया है जिंदगी में, लेकिन नहीं, लोग नहीं भूलने देते हैं, कहते हैं। और सच कहूँ तो मैं भी नहीं भूल पाती हूँ, ये भी कहा दीप्ति ने, बहुत प्यारा भाषण।

0: किया, वेरी स्वीट। तो ये स्पर्श तो हुई मेरी फिल्म, जिससे काफी सराहा गया, अवार्ड्स मिले, ये वो, और बहुत तेरे फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया गया, साथ साथ मुझे भी। तो मैं मॉस्को पहुंची, मॉस्को में फिल्म ये दिखाई गई, और प्यारा सा किस्सा सुना, क्योंकि वो फिल्म देख के बाहर निकल रहे थे लोग, और उसमें बीआर चोपड़ा थे, जिन्होंने मेरी पटकथा को मना किया था बड़े प्यारे ढंग से, मतलब मुझे कोई ये नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एपिसोडिक फिल्म है। अब आज तक मैं ये समझी नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा, सही, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया,
1: वाह वाह,
0: क्या प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए, मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे, वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी, और वो थे गुल आनंद।
1: क्या बात है,
0: गुल आनंद भी वहाँ थे, और वो तो बिल्कुल हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वाज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म, खट्टा मीठा, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का, और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी, फिर मुझे मिले जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह, कहके उन्होंने कहा कि सही, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे, तो उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोरकी पार्क, हाँ, तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहाँ घूमेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए, और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा, लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी बस, बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तेफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी, टेलीफिल्म, कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे कि आपने बताया। वो फिल्म थी, तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं फला करूंगा, मैं ढिमका करूंगा, ये वगैरह वगैरह।
1: ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
0: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मिर्च डाला
1: जी।
0: अच्छा,
1: शानदार वाला।
0: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ, ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, तो ये फिर तुम लिखो, कब, कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा। इसे जरूर, तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट एक महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी कहानी? मैंने कहा हाँ, होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए। भारत आके मैंने इधर उधर बताया, फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो, फला करो, मैं अब मेहनत करूं, लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले हैं आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो, मैं गुलानंद, बन गई, लिख ली मेरी आवाज़ खुश। मैंने कहा नहीं, अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। लेकिन ऐसे करो, प्लीज मुझे एक हफ्ता और दे दो। दे दिया उन्होंने कहा। फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदलना था वो बदल दिया, और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए, उसमें भी गुल का काफी ये था
1: योगदान।

0: योगदान,
1: कंट्रीब्यूशन.
0: एग्जैक्टली, योगदान बहुत था. कि उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए. कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए, वगैरह वगैरह. मैंने कहा समझ रही हूँ, इसे इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना. फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला,
1: भाई डाला,
0: एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला. तो ऐसे लोग डलते गए. फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ. लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई. और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था कि जो हम मांगे, मतलब किसी हद तक, तो वो एकदम पेश हो जाता था.
1: अच्छे प्रोड्यूसर की निशानी,
0: अच्छे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने. अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग. और फिर फिल्म बन गई और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक. और वहां भी गुल बहुत ही, मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल. ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनीवन एनी हार्म. फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा. उन्होंने एक्टर्स भी चुने. अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस, इस लड़की में बहुत टैलेंट है. हाँ, उसको लिया. और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वाज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म. हाँ, सेम विथ फारूक, सेम विथ
1: रवि.
0: रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था. मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर. मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो लेने. कुछ दो तीन लोगों के लिए मैं अड़ गई थी. एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी.
1: क्या
0: मैंने
1: बात
0: कहा
1: है?
0: ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए. दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे. तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा, ओके बाबा, ले लिया उसको. क्योंकि बाकियों को तो, रवि को बेचारे को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना.
1: राकेश बेदी,
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को. लेकिन
1: फारूक
0: उसने
1: कहां से किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना,
1: जी,
0: गमन
1: मुजफ्फर अली की.
0: मुजफ्फर की. और फिर देखा था उधर उधर. और फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था. तो गुल ने वो जरूर देखा होगा, जाके चुपचाप उनके प्लेस देखे होंगे, इधर देखा होगा उधर. वो तो बहुत करता था. फिर व्हेन ही वाज कन्विंस्ड कि यस, ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी. और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ. बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान.
1: दो फिल्में और
0: बहुत
1: वो
0: बहुत
1: आगे
0: अच्छा
1: बात
0: आदमी.
1: करेंगे कि कैसे कथा में नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना, वो आगे बात करेंगे. गाना सुनते हैं.

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ, सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रेमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन। और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, भाई वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहाँ के पान वाले देखेंगे। हाँ, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया
1: एक और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे पुरानी दिल्ली वाले, जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई, और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब और लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियां बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया, तो क्या रोल किया सईद ने। हाँ, बहुत बहुत ही मजा आ गया, एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल पर्सन। बहुत
0: सही जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं, जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बात?
1: ढूंढना क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी।
0: अच्छा,
1: अरे हमें इधर नहीं देखा, हमको शूट करो, क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी, और फिर बरसातियाँ, बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी,
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए। नसीर का घर जो था वो दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा।
0: बिल्कुल, और वो जिस तरह से हाँ, वो किचन
1: बड़ा टेस्टफुली किया हुआ। फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया, दोस्तों का था वो एक घर। और तीसरा रहा वो मंजुल जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है, जो संकन लिविंग रूम है उसका, वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे

0: एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे दूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
1: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी चश्मे बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं।
0: हाँ,
1: जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी बनाई,
0: मजाक उड़ाया था यार, रवि जो गाते हैं, रवि और दीप्ति मिलके
1: जी। हाँ, वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी परवीन बाबी का गाना आ जाता है तो कभी पुराने गाने चले आते हैं,
0: कभी जीनत अमान का आता है
1: जी जी,
0: कभी देवानंद का, और वो
1: क्या कमाल, देवानंद वाला तो अद्भुत
0: किया भी उसने, वो ढीली ढाली चाल उसकी
1: जी,
0: और कभी दिल चाहे या माथा यारा
1: मैंने तो हाँ कह दी,
0: वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो बहुत मजे मजे,
1: शीशा हो या दिल उसमें तो जो दीप्ति लगी है
0: वो बहुत अच्छा किया रहा उसने, बहुत सुंदर किया, रीना रॉय का बहुत खूबसूरत, तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत
1: जी। ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
0: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना, आ जा
1: तीसरी मंजिल,
0: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह, कुछ वीक पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा ले,
0: डांस करवा तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब VHS का जमाना था
1: जी।
0: तो VHS एक मंगवाया मशीन, और VHS कैसेट्स थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया, आ जा। उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ, आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब, तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए, मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं, तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह, और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही, ये सब को सही, हाँ जी जी बिल्कुल, ये सही, शो सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भरा है, वो उब गया वो भी और उसने फिर वो रोका VHS मशीन, ने कहा सही, ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो, वो मैं हूँ मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप, फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली, तो इतनी मजे की बात होती है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
0: ये जब फिल्म पूरी हो गई, और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं, तो हम राजकमल में पहुंचे, क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
1: जी,
0: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग, और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बंबई राजकमल में, हाँ
1: जी जी,
0: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था, हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं, मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने

0: इस्तेमाल किया है,
1: जी
0: विच इज अनहर्ड ऑफ. ये कभी कोई नहीं करता. फिल्म वाला, जो किसी नाम का फिल्म वाला हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक मतलब भद्दा होता है नहीं, वो
1: जी
0: सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है. लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे, तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक, नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा.
1: ओ
0: तो किसी ने कहा इनके पास जाओ, मंगेश देसाई के पास. तो मैंने कहा पिटाई करवानी है. मंगेश देसाई तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर भद्दा काम उनके पास ले जाओ ना, तो वो ऐसे रीलों के डब्बे

0: ये हम पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई? तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रिले फेंकते हैं। तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की। अच्छा ठीक ठीक चलो तो फिर बैठ जाओ, दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा। और क्या बताऊं कि ऐसा मेल जो मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा, वो जो चश्मे बद्दूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। हाँ, बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यो करेंगे वो करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लमर है और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा तो आप कुछ करो, और वो वहां से फिर भाग जाता है बड़ा पानी पानी होकर, शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यों क्या त्यों क्या। हाँ, और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है वो उसमें नैया एक थी और वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काँ, काँ, काँ। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही, हम दोनों इतने खुश हैं लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता क्या कि शायद ही किसी के जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं हम तो खुश हैं ना, इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे हीरो को अपने फारूक को कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों क्योंकि है तो बेचारे अच्छे, वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है। तो अब क्या करें, वो दोनों बहुत मायूस है और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा,
1: वाह वाह,
0: वो ये होता है ना कि आपकी पसंद वाला
1: जी।
0: मैंने कहा हाँ वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन अनाउंसमेंट करवा लेंगे, वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है वो। ओके फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, मैंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं वो मंगेश जी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी।

0: ऐसा करें कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ही ले लो, नो, अच्छा चलो। फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए क्या, और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई, यू नो, और फिर वो सारा झुमरी तलैया वगैरह ये सब सब डाला और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा का फर्स्ट टेक ओके हो गया, और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई दरवाजे में, मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, वाह वाह क्या बहुत खूब।
1: तो, क्या बात है, लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो गया।
0: बिल्कुल, अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, और जो वो अच्छी बात है याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए
1: जी,
0: है ना।
1: बिल्कुल, इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है।
0: हाँ, बहुत बहुत सुंदर है ना, बहुत संगीत और गीत भी। हाँ, गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ, और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है और वो वहाँ पहुंच जाता है, और मैंने कहा वो अपने सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी काली सी, तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन है,
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई है वगैरह, मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना लिरिसिस्ट, फिर राजकमल का म्यूजिक, और फिर गाने वाले, और फिर मेरे एक्टर और मैं,
1: कमाल। ये गाना सुनते हैं
0: जी, क्या बात।

0: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया।
1: हाँ।
0: ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
1: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, में कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है ना, कहां से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
0: जी, तो आंसू बह रहे हैं उसके, हाँ, और पूरा एक माहौल आप बनाते हैं उसमें।
1: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया।
0: आई
1: लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
0: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
1: हाँ, वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
0: बिल्कुल,
1: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या? मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं ये तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत,
0: हाँ।
1: वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हाँ?
0: बिल्कुल,
1: और इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
0: बिल्कुल, तो ये गाना इस
1: अच्छा,
0: इंटरव्यू में प्यार
1: लगावट
0: भी
1: सुनोगे? ओके।

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं, और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली
0: जी, नामावली, जिसमें
1: टाइटल्स।
0: वो एनिमेशन वगैरह है। जी
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और कथा में वो चूहा बिल्ली।
1: हाँ यस टाइगर और ये वो। और कथा
0: हाँ
1: में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आप देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। हाँ, तो वैसा ही उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये
0: लाइन है।
1: बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे ही करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल
0: फूल।
1: जसवंती का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परांस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर हा करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश
0: हाँ,
1: इनकी रेस तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: तो उसमें सारे अलग अलग
1: भी क्या। और
0: एनिमेशंस।
1: चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी बर्ट्रेंड रसेल वगैरह ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा की क्या बताओ
0: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की।
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस तरह से पूरा फिर आपका
1: या
0: नाम आता
1: दैट्स
0: है।
1: राइट। हाँ
0: सुंदर, मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया
1: हाँ
0: बातचीत में, और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
1: हो, उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए। बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा
0: कोई
1: कि
0: टकराव होता
1: आओ। बहुत बार, बहुत बहुत
0: था?
1: बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था, और बहुत मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए, और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
0: जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले।
3: उजाले उनकी याद।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: 16 लाख थी वधु ग्राहकों ए स्मार्ट मीटर लगावी फायदो लीधो, तमे लगाव्यू के नहीं?
2: दिवस ना 11 थी सांजना 5 वाग्या सुधी ना वपराश मा पर यूनिट 60 पैसा नू डिस्काउंट अने ऑनलाइन एप मा रीडिंग थी लई कंप्लेंट सुधी बधी सुविधा। पछी बीजू शू जोईए?
1: स्मार्ट प्रीपेड मीटर एटले बचत प्लस नियंत्रण प्लस पारदर्शिता। UGVCL मेहसाणा।
3: સુરીલી સાંજ કાર્યક્રમ આપ માણી રહ્યા છો વિવિધ ભારતીના અમદાવાદ કેન્દ્ર પરથી। કાર્યક્રમની અંતિમ પ્રસ્તુતિ આપ સાંભળશો આશા ભોંસલેના સ્વરમાં। ફિલ્મનું નામ છે કડુ મકરાણી, ગીતકાર અને સંગીતકાર છે અવિનાશ વ્યાસ।

ये लगता है कि जहाँ

آزادی ذرا یاد کرو قربانی سینکوں کی شوری

नायक कृष्णा सोनावणे ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ कश्मीर के नौशेरा का रुख किया। वतन की जानशीनी और जीत से कम कुछ भी नहीं। ये कॉल और यही इरादा अब

दिल में था, न सर्द हवाओं का फिक्र, न बर्फीली चट्टानों का डर, अपने अंदर शेर का जज्बा और वतन की आन का वास्ता लिए इस जत्थे की अगुवाई करते नायक कृष्णा सुनावणे नौशेरा की चौकी पहुंचे, इस इलाके का जायजा लिया। ये इलाका शत्रुओं की पहुंच से काफी दूर भी नहीं था और ये चौकी दुश्मनों पर निगरानी के मद्देनजर बेहद अहम थी। जंगी हवाओं के रुख को देखते हुए नायक कृष्णा सुनावणे ने 7वीं बटालियन की एमएमजी पोस्ट पर अपने साथी सैनिकों के साथ पोजीशन पहले से ही ले रखी थी। एक महार रेजिमेंट के जाबाज सैनिकों ने इस दुर्गम इलाके में एक दूसरे को कवर देने के लिए जो रणनीति बनाई उसे अमल में लाते हुए कुछ बंकरों में, कुछ खाई में तो कुछ पथरीली दीवारों के पीछे आड़ में रहे। इस बात की पूरी तस्दीक नायक कृष्णा सुनावणे ने की कि जंग के मोर्चों पर शत्रु की ताकत को बेदम किया जा सकता है और उसी लिहाज से प्लान ऑफ एक्शन को रेडी कर लिया गया। दिन के सन्नाटे में कभी यूं भी लगता था कि कहीं कुछ नहीं, तभी इसी सन्नाटे को चीरती गोलियों की आवाज वादियों को दहला देती। चाक चौबंद भारतीय सेना की ये 7वीं एमएमजी पोस्ट और इसके जाबाज सिपाही इन गोलियों का जवाब कुछ इस अंदाज में देते कि दुश्मन अपने इलाके भागकर छुप जाता। कुछ घंटों की अफरा तफरी के बाद शत्रु खेमों से आते बारूदी गोले और मोर्टार्स नौशेरा की वादियों को झकझोर देते तो इधर एक महार रेजिमेंट की भारतीय टुकड़ी के सिपाही भी अपनी मीडियम मशीन गन्स का मुंह खोल

देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती, पर जंगी शोलों का गुबार दिन ब दिन बढ़ता ही जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर के मद्देनजर शत्रु को कोई मुकम्मल फायदा हो सके, ये इतना आसान भी न था। अब जो

0: आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित नायक कृष्णा सोनावने की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: परीक्षा अमात्र एक शब्द न थी, परंतु दरेक उम्मीदवार ना वर्षोनी अथाग तपश्चर्या, माता पिता ने अनंत आकांक्षाओ अने देश ना उज्जवल भविष्य तरफ नु पहलू पगथियू छे। आ व्यवस्था ने जाळवी अने दरेक उम्मीदवार नी वर्षोनी मेहनत ने योग्य सन्मान अने न्याय आपवो ए ज सरकार नी प्राथमिकता रही छे। अने एटले ज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ना मार्गदर्शन हेठळ केन्द्र सरकारे युवा पेढ़ी ना भविष्य साथे चेड़ा करनारा असामाजिक तत्वों सामे अपनाव्यू छे पेपर लीक अने गैर रीति सामे जीरो टॉलरेंस।

नायक कृष्णा सुनावने की अगुवाई में एक महार रेजिमेंट के शूरवीर जवान मशीन गन से धुआंधार गोलियां बरसाते हुए शत्रु दल पर सिंह की तरह टूट पड़े।

कश्मीर की सफेद वादियों में अब सन्नाटा गहरा चला था, लेकिन तभी दूसरी एक और लहर दुश्मन सैनिकों की आगे बढ़ने लगी। ये तस्वीर अब तक साफ हो गई कि इनकी तादाद चाहे जितनी भी हो, ये हमला हमारे भारतीय सैनिकों की थाह लेने का था कि उनकी शक्ति को पहले कुछ पंक्तियों के सहारे बेदम कर इस चौकी को फिर हासिल किया जा सके। दोनों तरफ से गोलियों की गड़गड़ाहट ने पूरी वादियों को स्तब्ध कर दिया। ठंड और बर्फीली हवाओं में जहां सांस लेना भी मुश्किल था, अपने जिस्म जान की परवाह किए बिना हमारे फौजी आगे बढ़ते रहे। अब नौशेरा की इस एमएमजी पोस्ट पर चारों ओर से दुश्मनों ने आगे बढ़ना शुरू किया और जबरदस्त बमबारी और गोलियां बरसाते हुए काफी पास आ गए। इस दोनों तरफ की गोलाबारी के बीच शत्रु

सैनिकों को मौत की घाट उतारते हुए कृष्णा सुनावणे आगे बढ़ते रहे। लगातार हमलों और दुश्मनों से लोहा लेना, हथियार और गोला बारूद के जखीरे को भी आंकना, उन्हें फौजियों को मुहैया करवाना, सैनिक पोस्ट तक पहुंचवाने की नायक कृष्णा सुनावणे की जिम्मेदारी बड़ी थी। महार रेजिमेंट के कुछ सिपाही अगली पंक्ति में मोर्चा ले रहे थे और उनके ठीक बगल की पंक्ति में नायक कृष्णा सुनावणे थे। मशीन गन्स की गोलियों को खंगालते फिर निशाना साधा और अभी आगे कदम रखा ही था कि नायक कृष्णा के ठीक सामने भारतीय सैनिक, उनके रेजिमेंट के एक सैनिक जो नंबर एक गन पॉइंट पर तैनात थे और मोर्चा संभाल रहे थे, उनके ठीक गर्दन पर शत्रु की कई गोलियां एक साथ आकर लगीं। वो बुरी तरह घायल हो गए। एक सैनिक ने बड़ी फुर्ती से उन्हें संभाला और पीछे लिया। इसी जगह पर बड़ी तेजी से पहुंचते हुए नायक कृष्णा ने इस मोर्चे को संभाला और उनकी अंधाधुंध फायरिंग से नायक कृष्णा सुनावणे ये समझ चुके थे कि अब ये जंग आर पार की है। शत्रु ठीक सामने था। उन्होंने एक तरफ से हथगोले दागे और दूसरी तरफ अपने मीडियम मशीन गन से बिना वक्त गवाए ताबड़तोड़ फायरिंग की और इतनी ही तादाद में शत्रुओं की तरफ से आती गोलियों की बौछारों ने नायक कृष्णा और उनके साथियों को भी बुरी तरह से जख्मी किया। निढाल शरीर लेकिन हौसला ऐसा कि दुश्मन दांतों तले उंगलियां दबा ले। सोचा जिस्म जान रहे न रहे, नौशेरा की ये पोस्ट हर कीमत पर महफूज चाहिए। इस मुठभेड़ में जब कृष्णा दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, दुश्मन की काफी करीब से निकलती एलएमजी की बारूद ने उनके दाहिने हाथ पर निशाना साधा और नायक कृष्णा का दाहिना हाथ लगभग बेदम हो चला। जिस्म खून से लथपथ, फिर भी उन्होंने अपनी मशीन गन को बाएं हाथ से उठाया और सिंग सी गर्जना करते शत्रुओं पर गोलियां बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में इस मशीन गन में कुछ ऐसी खराबी आई कि इससे गोलियां चलाने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई और शत्रु को सामने खड़ा पाया। नायक कृष्णा सुनावणे ने हैंड ग्रेनेड उन पर दागे और पास जाकर शत्रुओं पर अपनी संगीन से वार किया। इस बीच उनके महार रेजिमेंट के सैनिक साथियों को भी आगे बढ़ने को वो प्रेरित करते रहे। इस घायल अवस्था में भी उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को मौके पर ही ढेर कर दिया। 2 घंटे तक ये जंग जारी रही। मैदान जंग से अपने पैर उखड़ते देख दुश्मनों ने जान बचाकर भागने में ही भलाई समझी। इस अफरा तफरी में उनके असलाहे, गोला बारूद और कुछ खुफिया दस्तावेज भी वहीं रह गए, जिसे बाद में एक महार रेजिमेंट ने अपने कब्जे में कर लिया। नौशेरा की ये अहम पोस्ट, जिस पर फतेह का तिरंगा फिर से लहरा उठा और सैनिकों की आंखों में खुशियों की चमक थी कि मादरे वतन की आन बान और शान जिंदगी से ज्यादा महफूज रहे। देश की मिट्टी को लहू का सलाम पहुंचे। हम रहे न रहे, भारत की आन रहे।

साथियों, भारतीय सेना की एक महार रेजिमेंट में शेर दिल सिपाही नायक कृष्णा सोनावणे महाराष्ट्र के जवानों में ऐसे पहले सेनानी या प्रथम सैनिक थे जिन्हें भारतीय सेना की तरफ से महावीर चक्र प्रदान किया गया। इन्हें महाराष्ट्र में धरती पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। फौजी साथियों, सन 1947-48 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई इस जंग में जम्मू कश्मीर के नौशे

महावीर चक्र प्रदान किया गया। इन्हें महाराष्ट्र में धरती पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। फौजी साथियों, सन 1947-48 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई इस जंग में जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फतेह का तिरंगा लहराने, सेना के सफल निर्देशन, अदम्य साहस, कमाल की सूझबूझ, अतुलनीय रणकौशल और वीरता के लिए भारतीय सेना की एक महार रेजिमेंट के निर्भीक और धाकड़ सिपाही नायक कृष्णा सुनावणे को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम नायक कृष्णा सुनावणे को सलाम करते

साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित नायक कृष्णा सुनावने की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुति सहयोग मनीषा सिंह और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: राम धुलिया।
1: जय राम जी की भाई।
0: साहब सरकार के लौटे नहीं अभी?
1: अभी तो नहीं आए।
0: गुलदस्ता बना लाया हूँ, आए तो कह देना, मोतिया के फूल अभी खिले नहीं है इसीलिए नहीं लाया, कहीं वो बरस पड़े और कल से मेरी जगह कोई और माली आ जाए।
2: नमस्ते साहेब।
3: नमस्ते। कोई टेलीफोन आया था?
2: जी नहीं।
3: और हमारी सेक्रेटरी चपलाई या नहीं?
2: जी नहीं, अभी वह नहीं आई।
3: ये क्या हाल बना रखा है अपना?
2: साहेब मेरा बच्चा जीवन सख्त बीमार है।
3: क्यों, क्या हुआ उसे? अच्छी तरह दवा दारू करो, जो पैसा

0: चाहिए वो हमसे ले जाओ।
1: मेहरबानी है आपकी साहब, अगर आप कहें तो आज मैं
0: देखो बाहर कौन है
1: जी। अच्छा,
2: गुड मॉर्निंग वर्मा साहब।
3: नमस्ते वर्मा साहब।
0: नमस्ते नमस्ते। आओ रीटा बैठो। केशवानी सुनो, कैसी तबीयत है, कहाँ हो आए?
2: जी हमारे ड्रामा क्लब का नया नाटक अदाकार हो रहा है, उसकी टिकट बुक्स और पोस्टर लाई हैं, ये देखिए।
0: वाह, बहुत खूबसूरत डिजाइन बनवाया है। आजकल तुम्हारे ड्रामा क्लब की अच्छी धूम है शहर में।
3: सब आपकी बदौलत है, जब से आप मेंबर बने हैं क्लब की हालत सुधर गई।
2: पिछले ड्रामे में अगर आप 500 रुपीज ना देते और अखबारों में हमारी पब्लिसिटी ना कराते तो हमारी तो पोजीशन ही बिगड़ जाती।
0: वो तो खैर मेरा फर्ज है, ड्रामे का शौक तो मुझे बचपन से ही है लेकिन पूरा करने का मौका ही नहीं मिला।
3: देखने में आप अच्छे खासे एक्टर मालूम होते हैं। सच मानिए, जब मैंने पहले दिन आपको देखा तो समझी थी कि आप
0: एक्टर।
2: वर्मा साहब इस बार बताइए कितने टिकट दे जाएं आपको?
0: 200-300 के दे दो, बांट देंगे यार दोस्तों को।
1: चाय साहब।
0: हाँ धुलिया रखो।
3: वर्मा साहब अखबारों में अभी से पब्लिसिटी भिजवा दीजिए, फिर आप भूल जाएंगे।
0: नहीं तो सेक्रेटरी आती ही होगी, आज ही लिखवा लेता हूँ।
2: आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हैं।
3: अभी मत बताओ रीटा, पहले इनसे मिठाई खिलाने का वादा लो।
0: मिठाई जितनी चाहे खा लेना, मगर बात क्या है?
2: ड्रामा डायरेक्टर ने इस ड्रामे में हीरो का पार्ट आपको दिया है और ये रहा आपका लिखा हुआ पार्ट।
0: और हीरो?
3: जी हाँ, उन्हें आपकी चाल डाल लबो लहजा बहुत पसंद है। और हाँ, कहते थे आप माइंड ना करें, पार्ट तो एक दुखी नौकर का है मगर नौकर ही ड्रामे का हीरो है।
2: और हाँ, डायरेक्टर साहब ने तो ये पार्ट किसी असली नौकर को भी दे रखा है, मगर हम सब तो यही चाहते हैं कि ये पार्ट अच्छी तरह से तैयार करके आप ही करें।
0: वो तो सब ठीक है रीटा, मगर वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, मैं आखिर कैसे कर सकता?
2: वर्मा साहब, हमें अगर कोई हीरोइन का पार्ट देता तो हम तो एक ही दिन में तैयार कर लें, फिर ये पार्ट आपको रिहर्सल में तो याद हो ही जाएगा।
3: जी हाँ, आपको तो सिर्फ एक दुखी गिड़गिड़ाने वाले नौकर के एहसास, चाल ढाल, बोल चाल वगैरह को समझना है। रीटा तुमने उस हॉलीवुड के एक्टर के बारे में?
2: हाँ वर्मा साहब, हॉलीवुड के एक एक्टर के चेहरे पर गुस्से का भाव आता ही नहीं था, तो उसने क्या किया कि राह चलते राहगीर को कंधा दे मारा।
0: अच्छा।
2: और राहगीर ने जो ही पलटकर गुस्से से देखा तो खट से नोट कर लिया कि गुस्से में किस तरह नथने फूलते हैं, माथे पर तेवर चढ़ते हैं और होठ सिकुड़ते हैं।
3: इतनी दूर क्यों जाती हो रीटा? अपने मशहूर स्टेज एक्टर शहनाज को ले लो। एक बार उन्हें गरीब चपरासी का पार्ट अदा करना था तो उसके लिए उन्होंने खुद अपने चपरासी पर तजुर्बा किया।
0: वो कैसे?
3: ऐसे कि वो उसे रात दिन झिड़कते रहते, उस पर गुस्सा करते रहते और इसका जो असर चपरासी पर होता उसकी नकल करते रहते।
0: वाह वाह भाई, बहुत खूब मिसालें दी आप लोगों ने।
2: अच्छा वर्मा साहब, अब हम चलते हैं।
0: बैठिए ना, इतनी जल्दी क्या है?
2: नहीं नहीं वर्मा साहब, अचानक हमें याद आया कि 2 बजे एक जगह और भी जाना है। वर्मा साहब याद रखिए, आपका पार्ट बहुत रोने गिड़गड़ाने का है।
0: अच्छा अच्छा,
2: अच्छी तरह से तैयार कीजिए।
0: हाँ, हाँ, अच्छा भाई, कोशिश करूंगा जरूर। अच्छा अच्छा,
3: बाय बाय।
2: बाय बाय।
0: नमस्ते नमस्ते। तो नौकर का पार्ट करना है, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। शाहनाज ने चपड़ासी का पार्ट करने के लिए चपड़ासी को स्टडी किया था, उस पर बनावटी गुस्सा, तो मैं भी अपने नौकर के पार्ट के लिए यानी नौकर के पार्ट के लिए अपने नौकर। ठीक है ठीक है,
1: ये लीजिए साहब लिफाफे, पोस्ट कार्ड और टिकट।
0: कहाँ मर गया था?
1: जी आप ही ने तो भेजा था डाकखाने लिफाफे लेने को।
0: लिफाफे का बच्चा जब देखो जब गायब रहता है।
1: जी मुझे तो आपने
0: ही... और उल्टा मुझ पर ही बात डाल रहा है।
1: जी मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा, मैं सच कहता हूँ।
0: देख लिया तुम्हारा सच, झूठ बोलना तुमने पेशा बना लिया है।
1: साहब भगवान मेरा जानता है, मैंने आज तक आपसे झूठ नहीं बोला। मैं तो बस डाकखाने तक गया हूँ और उल्टे पैरों वापस आया हूँ, मुझे कसम दिलाई लीजिए।
0: हाँ दिला रखी है कसम, जाओ काम देखो अपना।
1: जी बहुत अच्छा।
0: रीटा और केशवानी कहती तो ठीक ही थी कि एक्टिंग में असर लाने के लिए जिंदगी के असल किरदारों को ही समझना चाहिए, साहब साहब भगवान मेरा जानता है मैंने आज तक आपसे झूठ नहीं बोला। ना ना ना, आवाज में कुछ और गरीबी आनी चाहिए।

0: मुझसे कसम ले लीजिए हुजूर, मैं तो बस उल्टे पैरों डाकखाने से नहीं नहीं नहीं और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हौसला लाना पड़ेगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
0: चपला, इतनी देर कैसे हो गई? तुम प्राइवेट सेक्रेटरी हो या अफसर?
1: जी, घर में मेहमान आ गए थे। ये पोस्टर कैसा पड़ा है? अदाकार?
0: हाँ, एक ड्रामा हो रहा है, हम इसमें हीरो का पार्ट कर रहे
1: हैं। सचमुच? फिर तो हमें भी देखने का मौका दीजिए, ड्रामा में पार्ट करने का तो मुझे भी बहुत शौक है।
0: अच्छा, देखो पहले सारे किराएदारों के किराए की रसीद बनाओ और उनके पास भिजवा, बहुत जरूरी है।
1: अभी जाती हूँ।
2: धुलिया जी, कहिए।
0: कल दुबे जी का सामान वक्त पर क्यों नहीं पहुँचा कर आए?
2: जी जी, मैं आपके कहते ही दे आया था।
0: वो कहते थे तुम शाम के 5 बजे वहाँ पहुँचे थे।
2: जी नहीं, मैं सुबह 11 बजे देकर आया हूँ।
0: इसका मतलब है वो झूठ बोल रहे हैं। धुलिया, हर आदमी तेरी शिकायत करता है, याद रखो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा।
2: नहीं साहब, ऐसा ना कहिए, मेरी नौकरी ना छीजिए, मेरे साथ 3-3 पेट बंधे हुए, मैं कहाँ अपना परिवार लिए लिए नौकरी खाऊंगा। मैं कभी आपकी सेवा में कमी नहीं करूंगा सर।
0: बस बस, रोना धोना बंद करो, बाहर जाओ। वाह, ये हो ना कुछ बात।
3: साहब साहब, मेरी नौकरी मत छीनिए, मेरे साथ 3-3 पेट लगे साहब, मैं कहाँ कहाँ मारा मारा फिरूंगा।
0: पहले से अच्छा है, मगर अभी नौकर वाली गिड़गिड़ाहट नहीं आ रही।
2: मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, घर से खबर भिजवाई है कि छुट्टी लेकर जल्दी चला। मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, मेरे बच्चे जीवन की हालत बहुत खराब है साहब, मेरे बच्चे की हालत खराब है साहब, मुझे छुट्टी दे दीजिए।
0: देखा, अभी अभी कसम खा रहा था, अब लगा छुट्टी मांगने। एक मामूली नौकर होकर भी तुझे ये 100 रुपए की नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। हम तेरी पूरी तरह से छुट्टी कर देते हैं, आज से तेरी नौकरी खत्म।
2: नहीं नहीं साहब, ऐसा ना जुलम कीजिए, तरस खाइए, मेरे साथ में मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, नौकरी मुझे कोई नहीं मिलेगा सरकार, मेरी नौकरी ना छीनिए।
0: बस बस, बाहर बैठो, हम अभी तुम्हारा हिसाब कर देते हैं।
2: रहम खाइए सरकार, मुझे जीते जी ना मालिए।
0: ओहो, तुम ऐसे नहीं मानोगे, बुलाऊं किसी को, बाहर निकलाऊं धक्के दिलवाकर?
2: जाता हूँ सरकार, लेकिन रहम खाइए, रहम खाइए भाई बाप।
0: वंडरफुल, एक्सीलेंट, ये हुई ना बात। ऐसी एक्टिंग अगर मैं कर दूं तो बस।
3: नहीं नहीं साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए सरकार, मुझ पर तरस खाइए, मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है सरकार, जेब में पैसा नहीं है, मुझको तो कोई भीख मांगने पर भी नहीं मिलेगी सरकार, सरकार मेरी। कौन है? डायरेक्टर साहब, मिजाज शरीफ।
4: दुआ है, नजरे इनायत हैं, जी रहे हैं अपने सहारे।
0: डायरेक्टर साहब, वो साहब आपके साथ बाहर खड़े हैं ना?
4: जी हाँ जी हाँ। अरे बेटा सलवेट, अंदर आ जा। अरे वहाँ क्यों खड़ा है?
0: जी हाँ जी हाँ, अंदर आइए।
5: आ जाऊं चाचा जी?
4: हाँ हाँ, आ जा बेटा आ जा।
0: इनकी तारीफ?
4: जी हमारे क्लब के नए मेंबर हैं मिस्टर सलवेट, वैसे रिश्ते में मेरे भतीजे होते हैं, आजकल बेकार थे, मैंने सोचा इनसे कोई पार्ट कराया जाए, जरा शर्माते ज्यादा।
0: सलवेट साहब, आपको एक्टिंग का कब से शौक है?
5: जी बता दूं चाचा जी?
4: हाँ हाँ बेटा, अपने ही आदमी हैं
5: जी, मैं बचपन में रामलीला किया करता था, एक बार मैंने।
0: जी हाँ जी हाँ, शर्माइए नहीं, कहिए।
5: बता दूं चाचा जी?
4: तू तो शर्माने की हद कर रहा है सलवेट।
5: जी जी, मैंने स्वरूप नखा का पार्ट किया था एक बार।
0: वाह वाह, तो आप लड़कियों का पार्ट भी करते हैं, और इस ड्रामे में भी आप कोई पार्ट कर रहे हैं?
5: जी हाँ।
0: क्या पार्ट कर रहे हैं?
5: बता दो चाचा जी।
4: बता दो बेटा
5: जी। भरगुंजे का।
1: वर्मा साहब, रसीदें तैयार हो गई हैं।
4: वर्मा साहब, मैंने अपने नए ड्रामे में एक नई लड़की के लिए आपसे जिक्र किया था, याद है ना?
0: अरे हाँ डायरेक्टर साहब, इनसे मिलिए, मिस चपला, मेरी सेक्रेटरी, ड्रामे का बहुत शौक है इन्हें।
4: ओहो मिस चपला, मैं आपसे कुछ डायलॉग बुलवा कर देखना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज?
1: जी नहीं, बड़े शौक से बुलवाइए।
4: अच्छा तो यूँ समझिए कि ये मिस्टर सलवेट हीरो हैं और आप हीरोइन, आप इनसे कहती हैं, मोहन मैंने तुम्हारे लिए समाज छोड़ा, घर बार छोड़ा, मगर तुमने

0: मेरी तरफ कभी मीठी निगाहों से नहीं देखा, आखिर क्यों? इसे बोलिए।
1: बहुत अच्छा मोहन, मैंने तुम्हारे लिए समाज छोड़ा, घर बाहर छोड़ा, मगर तुमने कभी मेरी तरफ मीठी निगाहों से नहीं देखा, आखिर क्यों?
2: जी बता दूं चाचा जी।
0: बता दूं के बच्चे, तुझे अपना डायलॉग बोलना था, सब खेल बिगाड़ देता है। खैर अच्छा, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, कभी हमारे क्लब में आइए।
1: जी बहुत अच्छा, मैं जाऊं वर्मा साहब।
0: हाँ जाओ वर्मा साहब, हमने रीता और किशवानी को आपके पास।
3: जी हाँ डायरेक्टर साहब, आपका पैगाम मुझे मिल गया है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है।
0: वेरी गुड।
3: इसके लिए मुझे अपने नौकर से बहुत कुछ सीखने को मिला।
0: जी वो कैसे?
3: रीटा ने शाहनाज एक्टर की मिसाल दी थी कि चपड़ासी का पार्ट करने के लिए उसने अपने चपड़ासी को स्टडी किया, तो इसी तरह मैंने नौकर का पार्ट करने के लिए अपने नौकर को स्टडी किया।
0: जरा बताइए तो कैसे स्टडी किया और क्या सीखा आपने?
3: मैंने यूं ही झूठ मूठ उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी, उस पर वो कैसे गिड़गड़ाया सुनिए।
0: बोलिए।
4: साहब मुझे नौकरी से ना निकालिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे साथ तीन तीन पेट बंधे हैं साहब, मुझ पर रहम कीजिए साहब, मेरे हाथ में हुनर नहीं है साहब, जेब में पूंजी नहीं है साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब।
0: मैंने जवाब नहीं साहब,
3: मैंने कहा सुनिए एक्टिंग कैसी लगी आपको?
0: अरे साहब सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया आपने।
3: शुक्रिया। आपको कैसी लगी? सिल्वर साहब
2: बता दो चाचा जी।
0: हाँ बता दो बेटा, बता दो, तुम भी बता दो।
2: आपने तो मुझसे भी अच्छी एक्टिंग की।
3: डायरेक्टर साहब
0: हाँ जी,
3: सीखा तो बहुत कुछ पर मुझे बहुत रहम आया अपने नौकर पर। कहता था कि उसका बच्चा बहुत बीमार है,
0: तो अब आप और न सीखिए, उसे 10-20 रुपए इनाम दे दीजिए और कहिए कि उसे नौकरी से निकाला नहीं है आपने।
3: हाँ उसे बुलाकर कह देता हूँ कि तुझे नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि नौकरी की एक्टिंग सीख रहा था।
5: तो साहब मेरा रोना धोना ही कौन सा असली था, मैं भी तो।
0: अरे धुलिया तुम? अरे वर्मा साहब ये भी क्लब के मेंबर हैं, दरअसल ये नौकर का पार्ट इन्हीं को दिया था मैंने।
5: मगर नहीं डायरेक्टर साहब, अब तो वर्मा साहब से ही कराइए, मैं इनसे अच्छा नहीं कर सकता। और हाँ मेरा इनाम
2: दे दो चाचा जी।

0: આગે સાથે જ આજનો ચિત્રલોક કાર્યક્રમ અહીં સમાપ્ત થાય છે. પ્રસારણ વિવિધ ભારતીના અમદાવાદ કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. હવે આપને લઈ જઈશું દિલ્હી કેન્દ્ર પર અને સંભળાવીશું સમાચાર સંધ્યા હિન્દીમાં.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સે સમાચાર સંધ્યા કે સાથ મેં સર ફિરોઝી. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया. कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण. एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया. दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की. ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार. केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत. इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता. और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा. समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की. उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए

0: युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों

0: पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

0: झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास के गाए इस गाने से। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आनंद मिलिन का है, फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर को सुनिए, फिल्म का नाम है अपने रंग हजार, गीत अनजान का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

प्रेम प्रेम करके मुझको कर देगी अब तू पागल, मेरा धीरज डोल रहा है लाज रखे गंगा जल।

जॉनी मेरा नाम, जी हाँ ये नाम है फिल्म का, जिसका गाना अब आप सुनेंगे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कितनी विराट है ये दुनिया, जाने कहां तक फैला है इस ब्रह्मांड का विस्तार। आसमान पर है तारों से जड़ी विशाल छतरी, दुनिया के इस असीम विस्तार के बाद भी अकेलेपन की धुंध घिरी है चारों तरफ। तन्हाई के इस शॉल को लपेटकर जाने कितने ठंडे मौसम बिता देते हैं अकेले लोग। अकेलेपन की दुनिया में नहीं होते शब्द, वहां नहीं होती मुस्कानें, वहां तो शायद सुर भी नहीं होते, वहां होता है बस सर्द सन्नाटा।

0: जिंदगी।
1: सन्नाटे की दुशाला में हम एक रात बुनते हैं। इस रात को बुना जाता है खामोशी के तागे से। इस रात में अपने सपनों के मोती टांग दिए जाते हैं। वक्त के करघे पर कोई बुन रहा है अपने हिस्से की एक रात। वो रात जिसमें यादों की मोमबत्ती जल जल कर पिघलती है पर मुस्कान बिखेरती रहती है। बुन रहे हैं हम रात, हमारे हिस्से की रात।

समय एक लगातार बहता धारा है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है और इसका कहीं कोई आखिरी सिरा नहीं है। समय के इस विशाल प्रवाह में हम एक छोटा सा रेशा है। तय होता है कि कौन, कब, किसका हम सफर बनेगा, कैसे हम चलेंगे जिंदगी की राहों में साथ साथ।

0: समंदर के किनारे बैठी तो लगता है कितना विराट है ये समंदर और कितने छोटे से हम। लहरें आती हैं और अचानक भिगो कर चली जाती हैं। समंदर की चहल पहल के बीच भी होता है एक अजीब सा खालीपन। समंदर कितना कुछ सिखाता है हमें। समंदर सबसे ज्यादा ये सिखाता है कि टूटकर कैसे प्यार किया जाता है। किनारे के प्यार में समंदर सदियों से बार बार लौटता है किनारों की तरफ। इस तरह लौटना दुनिया की सबसे प्यारी बात है। प्यार करने वाले बार बार लौटते हैं एक दूसरे की तरफ।
1: दो दीवाने शहर में

0: छाया गीत में आज थे संगीतकार जयदेव की चंद नगमे, फिल्मों के नाम।
1: जिंदगी में जब
0: फिल्म दूरियां,
1: आपके
0: फिल्म कमन, फिल्म रेशमा और शीरा,
2: दो दीवाने शहर में,
0: फिल्म घरोंदा। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
3: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
3: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
5: तेरा जवाब नहीं,
3: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
5: प्यार का राग सुनो रे।
3: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
3: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: આપ છો વિવિધ ભારતીના અમદાવાદ કેન્દ્ર સાથે બરાબર 11 વાગે સાંભળશો હિન્દીમાં સમાચાર 11:05, અંગ્રેજીમાં સમાચાર અમારા દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી.
1: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને આજ વિકસિત ભારત નશા મુક્ત યુવા સંકલ્પ અભિયાન કી નઈ દિલ્હી મેં શરૂઆત કી. વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ સે ઉન્હોને કહા કે વિકસિત ભારત કે લિયે યુવાઓ કા શારીરિક રૂપ સે સ્વસ્થ, માનસિક રૂપ સે મજબૂત ઓર આત્મવિશ્વાસ સે ભરપૂર હોના જરૂરી હૈ.
2: દેશ કા યુવા આત્મવિશ્વાસ સે ભરપૂર હો ઓર ડ્રગ્સ જૈસી ઘાતક આદત સે હમેશા હમેશા દૂર હી રહે, યહી ઇસ અભિયાન કા ઉદ્દેશ હૈ. હમ સબકો યે સંકલ્પ લેના હૈ, હમારે યુવા નશે ઓર ડ્રગ્સ કે ખતરોં કો સમજે, હર તરહ સે જાગરૂક રહે ઓર ઉસસે દૂર રહે. ઓર ઇસ સંકલ્પ મે અબ રાષ્ટ્રીય નશા મુક્ત યુવા અભિયાન કી બડી ભૂમિકા હૈ.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे. श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए. उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें. भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है. SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है. रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई. इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है. यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है. दिल्ली

0: के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event, including My Bharat and National Service Schemes volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Under this scheme, compensation of up to 7.5 lakh rupees will be awarded depending on the specific circumstances. Compensation of 5 lakh rupees has been fixed for cases involving negligence in the discharge of duties by prison officials or staff, negligence by medical or paramedical personnel, and cases of prisoner suicide. All arrangements are in place for the counting of votes for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat, and Madhya Pradesh tomorrow. Polling for the Bankipur constituency in Bihar